0: मेरे कौन
1: मैं कौन गो है मैं
0: मेरे कौन टेकिंग पार्ट
1: कौन है
0: मेरे कौन